0: मेरी पतली कमर में हाथ डाल दे। ना सुनता नहीं जी तू, मेरे वास्ते दुध पत्ती पा दे।
1: कटिया किस्म की बेवकूफ औरत, अपने पति परमेश्वर तो चाह बनवानी है नी, हर रोज कपड़े धोना घट है।
0: नी की परलो आ गई, जे चार कपड़े धोना है ना सुनाउना मेनू, मैं बेली हां। मुकम्मल मेकअप करके टिचन पिचन होके मरुती कार विचों दी लंघना, तैने तकड़ी च अंब लेके मेरे अगे पिछे घूमना। भेन जी अंब बड़े मिठे।
1: नी ब्याह तो पहला कहना पैंदा, हुण तैनु बुढ़ी कहण नु रूह नहीं करदी। ब्याह तो पहला किन्नी मेरी इज्जत होंदी सी।
0: रुण जाने हो, तेरे इतना इज्जत आबरू वाले जरा सी मी नहीं हैगे। ओरे ओ केड़े बंदे ने जेड़े पीवियां दे पैर तो पींदे ने।
1: ओ इंसाना दी नहीं कुत्ते दी जून जोंदे ने। मेरे नाल इक्को ही है, कहंदे सी कुड़ी ता नेरा पटोला पटोला आ खद्दर भंडार देख लो, फिर कहंदे कुड़ी ता बड़ी सोहनी है सुनखी है, आ सोहनी देख लो जिन्हें मही वाल भी काला करता। कहंदे सी कुड़ी ता कदे उच्चा बोली नहीं, ऐ चुप चपीती देख लो जेड़ी इत्थे बोले सारे संगरूर च छुट्टी हो जाती है। कहंदे सी होर सुन ला करतूत, कुड़ी बड़ी उच्ची लम्मी है, आ उच्ची लम्मी देख लो, मेरे नाल तुरदी होवे इंज लगदा है जिवें डाल डेरा डब्बा जांदा होवे।
0: तेरे बारे कहंदे सी मुंडा बड़ा पढ़िया लिखिया, मर जाने तो दसवीं ना निकली।
1: मेरा बह जे उस बचोलन दा जिने मेरे नाल त्रो कीता, नी दिखा के बोटी ब्याह काली चोटी नाल कीता, हाय नी बचोलने तेरे सुंड पै जाणनी।
0: दुख देने आ मेरे सिर ते सिंग देख ले तू।
1: जे तेरे सिर ते सिंग हुंदे ता मैं ब्याह वाले दिनी सेरा बन के थोड़ा हुंदा। अच्छा। हाथ च पक्की राफल फड़ के घोड़े ते चढ़ के दृण दृण दृण हमला बोलदा, इस हंथरी नाल युद्ध करदा।
0: मैं सिंग मार के तेनू बिचाले पाड़ देना सी। जे मैनू पता हुंदा ना भई मेरे पल्ले चूहा पैणा, तां मैं कड़की च बुरकी ला के रख दी। हाय वे मैं एडिया एडिया गर्दन आलियां दी भैण रुलकी।
1: कोई मगर आया थोड़े, ये पहला रिश्ता नहीं जेड़ा देख के भुल गए ने।
0: बदल क्यों नहीं लैंदा?
1: मैं नीत बदल सकदा, जुत्ती बदल सकदा, कपड़े बदल सकदा, आ बुढ़ी नहीं बदल सकदा क्योंकि 47 तो बाद ए मॉडल नहीं आया।
0: ओ मेरा भुल गया, जो 47 साल रात कोठे ते खड़ो के मेरा इंतजार करदा सी। हैं
1: नी मैं की तेरे वास्ते खड़दा सी सड़े हाने, नी मैं ता तेरी छोटी भैन वास्ते खड़दा सी। मैनू की पता सी मेरा गलत ट्रांसफार्मर नाल कनेक्शन जुड़ जू।
0: नूर कोटने मैं की स्पार्क मार दिया, अबे तेरा ही सियापा कर दिया। हाय मर जा तू, हाय मर जा तू, हाय मर जा।
1: जिथे जंग मुकदी नी
0: टुट पैणा। मैं तेरी तीवी आ, कोई जुर्म नी।
1: मैं भी तेरा खसम आ, कोई मुजरम नी जेड़ा हर वेले तेरी लड़ाई दियां दालतां च रहा।
0: अबे मैं की तेनू सजाए मौत सुनाउनी आ दुश्मना।
1: पहला वजन घटा ला, फिर चक्कू तेनू हंसनी है।
0: मैं कहनी हां, कहनी तेरे ते बंब डिगे।
1: मैं ता कहना तू बंब च डिगे।
0: अच्छा कह कहना, मैं आज नहीं बचदी, मैं नहीं बचदी हुण, मैं चलनी आ मारना।
1: चल चल चल, छेती कर छेती कर छेती कर।
0: मैं नहीं बचदी।
1: चंगा ऐ कर, अंदरों कुंडा ला ली, जदों मर गई मैनू फोन कर दी।